0: यार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: बीमार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो पियम चुन के वेर क्वारो
0: पियम चुन के वेर क्वारो
1: बीमार मैं पाचू
0: यू आर लंग यू बी रोटेला।